0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज़।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: Zirconia. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा 3 तारसलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर बिमल दस जो दायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हर कलश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिम लोग उजागर, राम देवता अजल दबल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजाओ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जने साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगाधर आया, हेम रूप धरे असुर संहारी, रामचंद्र के काज संहारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपती कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतम भाई, सहज बदन तुम्हारा जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्री भई किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मद फल जानु, प्रभु मुंद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर्जन आई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुबारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिन पैसारे, सब शुकलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिता से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध।

दुजियारा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नमन निधि के दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्व सु करे संकट कटे मिट सभी पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख हुई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मृत्यु रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुं श्री अवर रामचंद्र शंकर जी वाजा जय हनुमान जय बजरंग बली।